मानवता में यकीन रखने वाले बलिदानी महापुरुषों ने संसार में चारों तरफ फैली नफरत की आंधी को हटाकर मानवता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। संसार बटा हुआ है, यह बिखराव में है, इसे एकजुट और जागरूक करके मानव एकता कायम करने वाले संतों भक्तों ने महान बलिदान दिए हैं। उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए ही मानव एकता दिवस का आयोजन किया जाता है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz।

प्रस्तुत है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 14, जो आधारित है नज़्म व गजल संग्रह लम्हा लम्हा सौगात पर, जिसको अपने शब्दों में पिरोया है श्री राजेंद्र पटवारी नाशाद ने। सहयोग किरणी दास, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता वारत्सुपुरी।

0: Não, minha nego, irmãozuri. Minha mãe, minha nego. Ascuta, ascuta, sam, conhece o batão? Ascuta, que água de novo.
1: Rajinder Patwari Nashad, ek nazam mein likhte hain. Wo bachpan ke din, wo ladakpan ke kisse, masarat se bharpoor jawani ke nagme, jawan dhadkanon ki sulagti wo raatein, wo sargoshiyon mein mohabbat ki baatein, kabhi yaad aaye to sar ko jhukana, aqeedat mein ek qatra aansu bahana, wahi zindagi ka ashasha hai baaki, wo agar na rakha kya hai ab zindagi mein, faqat uljanon ke us tanha safar mein, न दिल में है अरमा न चाहत है कोई न उम्मीद की कोई शमा ही रोशन न जा वो नजर में न मंजिल है कोई मगर जिंदगी का सफर मेरे यारो अभी तक है जारी और जारी रहेगा। नशाद लिखते हैं, भीड़ थी चेहरों की यूं तो हर तरफ, एक भी चेहरा न था इंसान का, एक भी चेहरा न था इंसान का। एक और नजम में नाशाद लिखते हैं, इसका उन्वान है मां का आंचल। नमन मेरा उस आंचल को छुपा रखा मुझे जिसने, बरसों तक बचपन में लड़कपन में बचा रखा मुझे जिसने, दुनिया की हर एक आफत से, सर्दी और गर्मी से, आंधी से, तूफानों से, हर वक्त हर लम्हा हर एक आफत से। वो आंचल कैसे भूलूं जो आंचल मेरी माँ का था, वो आंचल आज होता तो मेरा हर जख्म भर लेता, मेरा हर दर्द हर लेता। मैं कैसे भूल सकता हूँ मेरे उस माँ के आंचल को, श्रद्धा से है नमन मेरा मेरे उस माँ के आंचल को, श्रद्धा से है नमन मेरा मेरे माँ के उस आंचल को। माँ होती ही अनमोल है। बहुत खूब नाशाद साहब।

नौशाद साहब एक नज़म में लिखते हैं जिसका उन्वान है आज की रात। ये नजारे ये फिजाएं आज क्यों दिलकश नहीं, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। आसमां खामोश है, ये चांद तारे हैं खामोश, गुलसिता खामोश है, उनके नजारे है खामोश। आज खुशियां पाने के सारे सहारे हैं खामोश, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। माह नौ की चांदनी भी आग बरसती है आज, दहकते शोलों को दिल में और बड़काती है आज। मेरे जज्बों मेरे अरमानों को तड़पाती है आज, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। रात के इस साज में है आज कोई लय नहीं, दिल को बहलाने की इसमें आज कोई शय नहीं। क्या खबर इस रात की अब है सहर या है नहीं, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। हर तरफ खामोश मंजर हर तरफ वीरानियां, बज रही है चार सू क्यों गम की ही शहनाइयां। डस रही है आज मुझको अपनी ये तन्हाइयां, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। रात डलती जा रही है नींद क्यों आती नहीं, शमह बुझती जा रही है नींद क्यों आती नहीं। सहर सजती जा रही है नींद क्यों आती नहीं, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। किस तरह जाहिर में कर दूं आज अपनी बेबसी, लुट चुका चैनो करार मिट चुकी है हर खुशी। दर्द बनकर रह गई है आज मेरी जिंदगी, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। आज मैं तन्हा यहाँ नाशाद हूँ बर्बाद हूँ, कैद में मुकीद बुलबुल की मैं जो फरियाद हूँ। या किसी आशिक के कोई गमजदा रुवाद हूँ, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। सोचता हूँ गम के आंसू क्यों न मैं बरसाऊं आज, क्यों न मैं दीवार से ही अपना सर टकराऊं आज। या कोई भी जहर खाकर क्यों न मैं मर जाऊं आज, आज क्या ये बात है, उफ आज कैसी रात है। राजेंद्र पटवारी एक नज़म में लिखते हैं, सुकरात हो तो जहर का प्याला ही पिला दो, ईसा की तरह मुझको भी सूली पे चढ़ा दो। हक मांगना गर जुर्म है तेरी निगाह में, मुजरम हूं मुझे शोक से जो चाहे सजा दो। लेकिन मेरी आवाज दबाए न दबेगी, पत्थर की है लकीर मिटाई ना मिटेगी। चाहो तो अंधेरों को वसीह और भी कर लो, खुशबू तो अंधेरों से छुपाए ना छुपेगी। आवाज हक मेरी है ये लाएगी इनकलाब, हर जाबिर वो शातिर को ये कर देगी बेनकाब। वो दिन बहुत करीब है जब मेरी ये निदा, हर जुल्म का हर जबर का मांगेगी खुद हिसाब। हर जुल्म का हर जबर का मांगेगी खुद हिसाब।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। जारी है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 14। आज का ये कार्यक्रम आधारित है राजेंद्र पटवारी नाशाद के नजम व गजल संग्रह है लम्हा लम्हा सौगात पर। आपको कुछ और नज़में और गजलें सुनाता हूँ। नाशाद साहब एक नज़म लिखते हैं जिसका उन्वान है एतराफ। वो लिखते हैं, मैंने नाशाद रंग व नूर की खातिर में यूं ही अपनी आंखों में बसाए थे हसी ख्वाब, कभी एक महोम तमन्ना का सहारा लेकर छूने निकला था अबस दामन महताब, कभी मैंने सोचा था कि ख्वाबों में हकीकत होगी, वक्त के साथ मेरे ख्वाब भी पूरे होंगे, गुल व गुंचे भी मेरे शौक के खिल जाएंगे, महले हसरत के वो मेहराब भी पूरे होंगे, बंद आंखों को जो खोला तो सयाही में, मगर अपने जज्बात को शोलों में सुलगते देखा, और तसव्वुर ने तराशा था जो एक ताज महल, मेरी आंखों ने वो खंडर में बदलते देखा, दिल को एक ठेस लगी जख्म लगा दर्द बढ़ा, मेरी आंखों के हसी ख्वाब सभी टूट गए, देखकर अपनी उमंगों का वो तलख अंजाम, मेरे होंठों से वो नगमात सभी छूट गए, दर्द सीने का बड़ा तब कहीं एहसास हुआ, दिल की वहशत को मसरत में समझ बैठा था, चंद बेकार उम्मीदों पे भरोसा करके अपने ख्वाबों को हकीकत ही समझ बैठा था, अपनी हसरत को उम्मीदों को तमन्नाओं को छोड़ आया हूँ कहीं दूर के वीरानों में, गुजरे आयाम की यादों को लिए दिल में, मगर मैं भटकता ही रहा गम के सियाह खानों में, मुझसे अब मेरी उमंगों का सलाह मत पूछो, मेरा हासिल मेरे अश्कों के सिवा कुछ भी नहीं, अपनी मुहूम तमन्ना पर नदामत है मुझे, मुझको बेकार उम्मीदों से मिला कुछ भी नहीं, मुझको बेकार उम्मीदों से मिला कुछ भी नहीं।

नौशाद साहब एक और नज़म में लिखते हैं जिसका उन्वान है इल्तिजा। मेरी हमनशी तुम मेरी बात मानो, मेरी याद दिल से तुम अपने निकालो, मेरी साफ गोई पर हैरान न होना, मेरी बात से भी परेशान न होना, मैं जो कह रहा हूँ वो है एक हकीकत, नहीं तुमको पाने की है मुझ में हिम्मत, करूँ बेबसी अपनी कैसे मैं जाहिर, मैं मंजिल से भटका हुआ हूँ मुसाफिर, तेरे नाज अब मैं उठा न सकूंगा, मैं ये रस्म उल्फत निभा ना सकूंगा, मैं ये मानता हूँ कि मैं भी हूँ इंसान, मेरे सीने में भी मचलते हैं अरमान, मगर उनकी दुनिया में वक्त ही क्या है, मेरे जज्बाए दिल की कीमत ही क्या है, मेरे अपने अरमान रहे हैं अधूरे, मैं क्या कर सकूं तेरे अरमां पूरे, मुझे जिंदगी से मिला कुछ नहीं है, मेरे पास गम के सिवा कुछ नहीं है, मुझे पाके तुमको भला क्या मिलेगा, फकत तेरा मासूम दिल ही जलेगा, मुझे है खबर गम उठा ना सकोगी, मेरे रास्तों पर तुम आ ना सकोगी, मेरा रास्ता ही तो सबसे जुदा है, तुम्हें क्या खबर मेरी राहों में क्या है, मेरे रास्तों पर तो वीरानियां है, फकत तीरगी और तन्हाइयां है, मेरे हमसफर मेरी नाकामियां है, मेरे हमनवाह बस परेशानियां है, तेरा मेरी राहों पे चलना है मुश्किल, मेरे गम के सांचे में डलना है मुश्किल, तुम्हें मुझसे उल्फत ये माना सही है, मगर मेरी दुनिया ही उजड़ी हुई है, मैं खुद

जिंदगानी से तंग आ चुका हूँ, मैं खुद इस जवानी से तंग आ चुका हूँ। मुझे नाज है इस मोहब्बत पे तेरी, मुझे नाज है इस अकीदत पे तेरी। मोहब्बत की तेरी कदर कर रहा हूँ, मगर साथ ही मैं बहुत डर रहा हूँ। कहीं हुस्न तेरा तबाह ना हो जाए, कहीं तेरी सुर्खी सयाह ना हो जाए, कहीं तेरी सुर्खी सयाह ना हो जाए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 14। आज का एपिसोड आधारित था नज़्म व गजल संग्रह लम्हा लम्हा सौगात पर। लेखक श्री राजेंद्र पटवारी नाशाद, सहयोग किरणी दास, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सुपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरजे शिवानी। आज मैं आपके लिए एक और पॉजिटिव स्टोरी लेकर आई हूं, जिसका शीर्षक है एक साधे सब सधे। एक लड़के ने एक बार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। वह अभी अक्षर ज्ञान सीख ही पाया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसीलिए उस दिन उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने लग गया। इस तरह काफी उम्र बीत गई। ना वह धनी हो सका, ना विद्वान, और ना ही अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुरा कर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है। जहां भी जाओगे वहां कोई ना कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जी जान से उसको प्राप्त करने के लिए लग जाओ। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलने से कहीं भी पहुंच नहीं पाओगे। युवक को महात्मा की बात समझ में आई और वह एक लक्ष्य बनाकर उसी का अभ्यास करने लगा। वैसे भी कहा गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो भी कार्य करे पूरे तन मन से एकाग्रित होकर करे। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही है कि एक जगह टिक कर मेहनत की जाए, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अर्जुन की तरह सिर्फ हमें अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना चाहिए, तभी हम जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। इसी के साथ अब लेती हूँ मैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहिए और सुनते रहिए 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरने। यह है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, लेकर आई हूं किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट की नई श्रृंखला। आज का टॉपिक है, माफी मांगना आसान है, गलती न करना मुश्किल। नकारात्मक व्यवहार विकृति हो सकता है और पक्की सोच का नतीजा भी। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपका साथी बिना किसी आत्म मंथन के अपना पक्का नकारात्मक रवैया बदल लेगा, तो इस पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। आज कई रिश्तों में ये एक आम रवैया बनता जा रहा है, पहले गुस्सा, फिर बदसलूकी और बाद में माफी। देखने में ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन जब गलत व्यवहार को बिना सवाल किए बार बार स्वीकार कर लिया जाता है, तो सामने वाले को ये महसूस होने लगता है कि उसका व्यवहार चल जाएगा। इससे रिश्ता एक के लिए घुटन और दूसरे के लिए मनमानी बन जाता है। इस व्यवहार से यूं निपटे, सबसे पहले सही समय चुनना जरूरी है। गुस्से के समय बात करने से स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए शांत माहौल में अपनी बात रखें। गलत व्यवहार को सीधे पहचाने और बताइए कि क्या गलत था। इसमें सामने वाले को स्पष्ट समझ में आता है, जैसे खाने में नमक कम होना बहुत छोटी बात है, इस पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाना गलत है और इस बात से मुझे दुख हुआ। सिर्फ सॉरी स्वीकारने के बजाय स्पष्ट कहे कि बदलाव जरूरी है, क्योंकि माफी तभी मायने रखती है जब व्यवहार में बेहतरी दिखाई दे। बदलाव की पहल कैसे करें? बात टाले नहीं, सही समय पर चर्चा करें, 24 घंटे के अंदर शांत तरीके से बात करें। गुस्से में जवाब देने के बजाय थोड़ा रुक रुक कर सोचे और फिर प्रतिक्रिया दे, स्पष्ट परिणाम तय करें। जैसे गलती बार बार हो रही है तो तय करें कि आगे क्या कदम उठाएंगे। जरूरत पड़े तो मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए अगर समस्या बार बार दोहराई जा रही है तो किसी काउंसलर या विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेना सही कदम हो सकता। खुद में भी लाइए बदलाव, अपने लिए खड़े होना सीखिए, क्योंकि हर बार गलत व्यवहार सहना आपका आत्मसम्मान कम करता है। गलत व्यवहार पर चुप रहना उसे बढ़ावा देता है। अच्छे इंसान और छवि बनाने के लिए दिखावटी व्यवहार करने वाले में अंतर समझे। आखिर क्यों सहती है महिलाएं ऐसा व्यवहार? किसी भी टॉक्सिक पैटर्न को तोड़कर बाहर निकलना इतना सरल

बन जाता है। भविष्य की चिंता व बच्चों की सुरक्षा का डर उन्हें यथास्थिति बनाए रखने पर मजबूर करता है। यदि किसी ने बचपन से अपने घर में इसी तरह का माहौल देखा है तो उसे ये व्यवहार सामान्य लगने लगता है। समझना जरूरी है, अगर सामने वाला व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा आपने शुरू में समझा था तो इसे स्वीकारना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा उम्मीद ना रखें और किसी को परफेक्ट या देवता मानने की गलती ना करें। इंसान को उसकी असलियत में स्वीकार करके ही रिश्ते के साथ चलना चाहिए, क्योंकि रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि आपसी सम्मान व जिम्मेदारी से चलता है। यह था आज का रेडियो पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आप अपना फीडबैक हमें भेजिए 7056413010 पर। नंबर एक बार रिपीट करती हूँ, 7056413010। नमस्कार।

बिना थके लगातार निरंतर उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। तो ललदेत हमें ये इशारा करती है यहाँ पे कि जो नाम, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, इनमें प्रभु नहीं मिलता। नाम तो हम इंसानों ने दिए हैं परमात्मा, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है। ललदेत के कहने के अनुसार नामों में कुछ नहीं रखा था, और अंत में मैंने जो पाया वो पाया कि कुछ नहीं में ही वो सब कुछ है। यानी जो मैं पूछ रही थी, जिस सच्चाई की खोज मैं कर रही थी, वो सच्चाई की खोज मुझे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं मिला। वो खोज मेरी खत्म हुई जब मैं अपने में ही डूब गई, जब मैंने अपने आप को ही समाप्त किया। अपने आप को समाप्त करने का मतलब ये है कि जिन विचारों से मैं अपने आप को खड़ा करता हूँ, बनाता हूँ, वो विचार ही जब मैंने खत्म कर दिए और विचारों के पार चला गया, तो उस कुछ नहीं में से मुझे कुछ दिखाई दिया। और साइंस भी यही कहता है कि ये जितना भी मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स का, ये नथिंगनेस से निकला हुआ है। ये सारा एक क्वांटम फील्ड है, और उसी क्वांटम फील्ड की नथिंगनेस में से ये सारी फिजिकल वर्ल्ड की मैनिफेस्टेशन होती है।

वास्तव में जीवन चलना है, ढलना है, जलना है, रूहों का सफर है, इनके साथ जन्म जन्म के रिश्ते बंधे हैं। कोई चला गया तो कोई जाने की तैयारी में है। समा है 100 बरस का, पर पल भर की खबर नहीं।

क्यों तुम याद आते हो अक्सर इस खामोशी में। जमाने बीत गए, बदलते रहे मौसम, चांदनी रातों में चिनारों की ठंडी छांव तले आंखों में बसते हैं ख्वाब, और कभी इन ख्वाबों की ताबीर हुआ करते थे आप, पर बिछड़ते इन मौसमों के संग ख्वाब भी टूट गए और बिखर गई चांदनी।

पंछियों की टोलियां रवा हैं अपने सफर पे, और दौरानी सफर अपनी परवाज लिए आकाश की बुलंदियों को छूना ही ये अपना लक्ष्य मानते हैं। इनके लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखते हैं, इनको बस उड़ने से मतलब है। बादलों में गुम हो जाना शायद इनका मकसद रहता है। फिर धीरे धीरे ये अपना सफर तय कर लौट आते ही जमीन पर इन पीले फूलों के खेतों में शबनमी बूंदों से नहा लेते हैं।

जाना है जमीन पे तुझे, जाना है फलक पर अब, पर मिलोगे शायद तुम वहां, धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर। धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर, और चाहते ही बेअसर। अब यहां प्यार चुभता है क्योंकि फासले हैं दरमियां, तभी मोहब्बत बेमाने है। सुरीली यादें ही जावेदा जो बह जाती हैं अक्सर मेरे साथ।

चांदनी रातों के बाद एक ऐसी ही सुबह का इंतजार रहता है जो मेरे लिए गुलाबी सुबह बन जाए। आओ, आओ तुम्हें इन बर्फीली हवाओं का एहसास कराएं। चल मेरे साथ कोहसारों के उस पार जहां पल भर के लिए अब मर जाएं।

दोस्त, आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब आज के लिए बस इतना ही, चाहेंगे आपसे इजाजत।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 7। प्रस्तुत करेंगे राहुल अलियान, स्क्रिप्ट निया जैन का, एडिट निर्देशन भारत सोपोरी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 7 और आज हमने चयन किया है फिल्म चलते का नाम गाड़ी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान। आज हम आपको सुनाएंगे फिल्मी किस्से फिल्म चलते का नाम गाड़ी का, जो हिंदी सिनेमा की एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार तीनों भाई एक साथ नजर आए। ऐसा बहुत कम फिल्मों में हुआ है। इस फिल्म में तीनों भाइयों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म में मधुबाला ने भी अहम भूमिका अदा की है। फिल्म को सत्यन बोस ने निर्देशित किया था और इसका संगीत SD बर्मन ने दिया था। आप बने रहे हमारे साथ, आपको इस फिल्म के और भी फिल्मी किस्से सुनाएंगे और इसी फिल्म के मनमोहक गीत भी।
1: हम थे वो थी हम थे

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

0: यानि यानि प्यार हो गया।
1: इस फिल्म का उद्देश्य है कि जो काम करता है वह ठीक है, चाहे वह कैसे भी काम करे। यह संदर्भ संभवतः तीनों भाइयों की पुरानी घिसी पीटी कार की ओर है, जो ज्यादातर खराब हो चुकी है फिर भी काम करती है। फिल्म के दूसरे गाने बाबू समझो इशारे के शूट के दौरान कैमरा पर्सन आलोक दास गुप्ता की कार से टक्कर हो गई थी। यही नहीं, एक गाने के शूट के दौरान आलोक तालाब में गिर गए थे और डूबने ही वाले थे, जबकि उन्हें तैरना भी नहीं आता था।

0: है प्यारे।
1: इस फिल्म के साथ ही इसके गाने भी हिट हुए थे और 5 रुपया 12 आना तो आज भी लोगों की जुबां पर रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी कहानी है? दरअसल किशोर कुमार पर इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से 5 रुपया 12 आना का उधार था, जिसको लेकर वो मस्ती में गाते थे। इस बारे में अमित कुमार ने रिवील किया था।

बम्बक बम बम्बक बम बम्बक बम बम्बक तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा।

इसके साथ ही मधुबाला की 1958 के लगातार चौथी बड़ी हिट फिल्म बन गई, जिसे 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में शीर्ष महिला सितारे के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई। फिल्म के एक गाने में मधुबाला को विलेन सज्जन प्रपोज करता है, लेकिन मधुबाला इसे कंफर्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह थी कि उन्हें लग रहा था कि उनके डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं। हालांकि निर्देशक बोस के समझाने के बाद आखिर में मधुबाला मान गई। इसी फिल्म के दौरान मधुबाला और किशोर कुमार की नजदीकियां भी बढ़ी और दोनों की ये नजदीकियां हाल कैसा है जनाब का के शूट के दौरान हुई और बाद में उन्होंने शादी कर ली।

0: कहा जाता है इस फिल्म का निर्देशन पहले बंगाली डायरेक्टर कमाल मजूमदार करने वाले थे, लेकिन मुहूर्त के 3 घंटे पहले ही उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया और वजह बताई कि वो तीनों गांगुली ब्रदर्स को लेकर हिंदी फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब कमाल मजूमदार ने फिल्म से इनकार कर दिया तो किशोर कुमार सत्यन बोस के पास गए और बात बन गई। इस फिल्म के लिए अशोक कुमार और अनूप कुमार को किशोर कुमार ने ही मनाया था। सिर्फ यही नहीं, फिल्म के लिए पिता की कार का कंसेप्ट भी उन्होंने ही लिखा था।
1: अजय सुना सरदारा की आने

0: फिल्म शूटिंग के दौरान किशोर कुमार ने सेट पर खूब मस्ती की और कई बार सीन में बदलाव भी किए जो बाद में फिल्म में रखे गए। ये फिल्म बहुत कम बजट में बनाई गई थी। इस फिल्म को लेकर किशोर कुमार को लगता था कि ये फ्लॉप हो जाएगी। दरअसल किशोर कुमार चाहते थे कि उनकी आय कम रहे और इनकम टैक्स में घाटा दिखा सके, लेकिन इसकी कॉमेडी, संगीत और कहानी से इसे सुपरहिट बना दिया गया। किशोर कुमार द्वारा फ्लॉप होने की उम्मीद के साथ चलती का नाम गाड़ी ने बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल की, जो अंततः बोस और गांगुली भाइयों का सबसे सफल काम बन गया और उस साल की दूसरी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई। बाद में किशोर कुमार ने इस फिल्म के सभी अधिकार अपने सचिव अनूप शर्मा को दे दिए।
1: अरे

चलती का नाम गाड़ी के बारे में जिस बात का अक्सर जिक्र किया जाता वह है महिला का चित्रण। मधुबाला का किरदार एक साधारण रूप से आजाद महिला का है जो अपनी कार चलाती है और पुरुष प्रधान दुनिया में अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए अटल है। अनूप कुमार की प्रेमिका पेट्रोल पंप चलाती है। अशोक कुमार की पूर्व प्रेमिका की जबरन शादी कर दी गई थी, लेकिन जब वे 10 साल बाद मिलते हैं तो वे उसे वापस लेने के बारे में दोबारा नहीं सोचता। 1950 के दशक या वास्तव में 1960 या 1970 के दशक की किसी अन्य हिंदी फिल्म के बारे में नहीं सोच सकता जिसमें महिला को पुरुष के समान माना गया हो और जिसमें सभी पुरुष नायक कम अंतरराष्ट्रवादी हो।

बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, और हम थे वो थे और समा रंगीन, जैसे गाने उस समय बहुत हिट हुए थे और आज भी लोकप्रिय हैं। और साथ ही यह फिल्म चलती का नाम गाड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्म है, जिसने अपनी छवि लोगों के मन में हमेशा के लिए छोड़ दी है।

और इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त राहुल अलियान को दीजिए आज्ञा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक नई फिल्म और फिल्मी किस्सों के साथ। खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 7। आज की फिल्म थी चलती का नाम गाड़ी। रिकॉर्ड व प्रस्तुत किया राहुल अलियान ने। स्क्रिप्ट तैयार किया निया जैन ने। एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज मेरे साथ हैं FM 90 के को फाउंडर डायरेक्टर किरनी।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास मुलाकात, एक ऐसी काबिले एहतराम सुनहरी आवाज की मालकिन उद्घोषिका और एक बेहतरीन इंसान श्रीमती माधवी शर्मा जी के साथ बातचीत।
1: इनके साथ बात करेंगे एक लेजेंडरी वॉइस और एस ब्रॉडकास्टर जो देश विदेश में प्रख्यात है। वो हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा भी है। वो है आदरणीय रमेश मरहट्टा जी।
0: आइए सुनते हैं और श्रोताओं को सुनाते हैं ये वार्ता दो अनुभवी ब्रॉडकास्टर्स के बीच, और साथ ही हसीन नगमों से सबका मनोरंजन भी करेंगे।
1: प्रस्तुत है ये कार्यक्रम।
2: नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं माधवी शर्मा, नाम ही काफी है। रेडियो की एक मायानाज उद्घोष का। माधवी जी नमस्ते।
3: रमेश जी, कुछ शब्द नहीं आ रहे मेरे सामने जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं कि आज की इस महफिल में आपने मुझे मेहमान बनाया है, और जितने विशेषण आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं, शायद मैं इसके काबिल हूं या नहीं हूं, इसके बारे में मैं कह नहीं सकती।
2: कहाँ पैदा हुई आप?
3: मेरी पैदाइश जम्मू की है। मेरे पिताजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे। वो उन्होंने BSc एग्रीकल्चर बापटला आंध्र प्रदेश से की थी और MSc एग्रीकल्चर कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की थी, और वो जम्मू कश्मीर के पहले प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे।
2: अच्छा।
3: तो वहां पे तलातुलो फॉर्म था, वहां पे वो मैनेजर लगे थे, और मेरी पैदाइश उसी घर की है।
2: खेले कूदे
3: वहां पे। उसके बाद जैसे आपने कहा कि बचपन कहाँ बीता, मेरी दादी का घर, दादा दादी का घर लिंक रोड के पास मस्तगढ़ में था।
2: अच्छा।
3: वहां हम सब ताया चाचा उनके बच्चे इकट्ठे रहा करते थे एक संयुक्त परिवार में। और संयुक्त परिवार में आपको पता है
2: जॉइंट
3: फैमिली में उसका जो एक ऑरा ही अलग होता है, एक अलग सा आभास होता है। जहां तुम्हारा मनपसंद खाना बन रहा हो वहां जाके तुम आराम से खा लो। हो सकता है तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती रहे, लेकिन वो भी जानती थी कि अगर ये समय से नहीं आई है तो जरूर किसी जगह उसको अपना मनपसंद खाना मिल गया है।
2: अब वो दौर नहीं रहा,
3: वो बातें नहीं रही, वो रिश्ते नहीं रहे, और वो सुखद आभास नहीं रहा।
2: रेडियो के साथ कब से जुड़ी आप?
3: मैं मात्र 6 वर्ष की थी रमेश जी जब मैं रेडियो में मैंने आना शुरू किया, बच्चों के प्रोग्राम में। हमारे मोहल्ले में एक उद्घोषक थे RP साहनी, वो मेरे पिताजी के मित्र थे। तो कहने लगे आप माधवी को क्यों नहीं भेजते हो? तो पिताजी ने कहा अभी तो छोटी है तो उसे क्या भेजना, उनका भेजिए बच्चों के प्रोग्राम में। तो उनके आग्रह पर मैं 6 साल की उम्र से बच्चों के प्रोग्राम में आना शुरू किया। उस समय यहाँ बरगद का पेड़ होता था, अगर आपको याद है, आप भी हमारे बहुत पुराने हमारे सहकर्मी हैं। तो उस बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा किया जाता था और प्रिंटेड स्लिप्स मिलती थी, और जो बच्चा उस स्लिप को बिना फंबल के पढ़ लेता था उसी को लाइव माइक्रोफोन पे आने की इजाजत होती थी, क्योंकि तब बच्चों का प्रोग्राम लाइव होता था।
2: बिल्कुल।
3: तो वो जो परीक्षा थी हमने पास कर ली, और हमें पहली बार वो जो हमने स्लिप पढ़ ली और हमें उसके लाइव माइक्रोफोन पर बच्चों के प्रोग्राम में वो स्लिप पढ़ने का जो सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ, तो वहां से मेरा ये सुनहरी सफर जो है वो शुरू हो गया।
2: धीरे धीरे फिर आगे बढ़ती गई,
3: लेकिन आई नेवर लुक्ड बैक। उस बच्चों के प्रोग्राम के बाद, बच्चों के प्रोग्राम में तो आती रही लेकिन आई नेवर लुक बैक। उसके बाद मुझे ये लगा कि जैसे मैं इसी के लिए बनी हूँ। अभी मैं बहुत छोटी थी, बच्चों के प्रोग्राम में आना शुरू किया। फिर एक समय आया कि बच्चों के प्रोग्राम में जो बच्चे थे वही प्रोग्राम को एंकर करते थे।
2: अच्छा।
3: तो उसमें एक मुझे चुना गया और एक मेरे साथ थे जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। तो हम दोनों भैया दीदी बनकर बच्चों का प्रोग्राम एंकर किया करते थे,
2: प्रेजेंट करते थे।
3: हाँ, वो भी एक बहुत ही सुंदर और अनूठा एक्सपीरियंस था।
2: उसके बाद बाकी जो आगे आप आवाज आपकी आई, कैजुअल अनाउंसर से शुरुआत हुई?
3: नहीं, कैजुअल अनाउंसर नहीं, उससे पहले जब बच्चों के प्रोग्राम से हम आगे निकले तो बाल कलाकार बने, ड्रामा वॉइस।
2: अच्छा।
3: उसमें हमने आना शुरू कर दिया। उसके बाद जब थोड़े से और आगे सीनियर क्लास में गए तो मेरी पसंद कार्यक्रम पत्रावली और आपकी पसंद कार्यक्रम, उसको हमने कंपेयर करना शुरू कर दिया, और वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम म्यूजिक ऑफ माय चॉइस।
2: अंग्रेजी पे आपकी पकड़ थी,
3: प्रोफिशिएंसी थी, हाँ जी, उसमें भी थी पकड़। उर्दू आती थी कुछ, यहाँ के जो मेरे वरिष्ठ मेरे सहकर्मी थे उन्होंने बहुत प्यार दुलार के साथ मुझे सिखाया, ग और अज इस सब का, कहते ना वो आपके जेब और वो सब कुछ उन्होंने मेरा दुरुस्त किया, पर वो कहते थे तुम्हारा इतना खराब नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बारीकियां जो है ब्रॉडकास्टिंग की, भाषा की, वो सिखाई। और वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम म्यूजिक ऑफ माय चॉइस, पत्रावली और आपकी पसंद कम से कम 16-17 साल तक मैं करती रही।
2: आपके दूसरे साथी कौन थे जो?
3: बहुत से थे, शिव मोहन ने मेरे साथ वो प्रोग्राम किया, उसके बाद एक और थे हमारे यहाँ पे अनाउंसर रवि कांत के साथ भी कुछ देर के लिए किया, लेकिन मैं उस प्रोग्राम को करती रही। और तब तक मैं अपना कॉलेज शुरू कर चुकी हुई थी, और जब मैं ग्रेजुएशन मैंने कर ली रमेश जी, तो मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बलबूते पर MA इंग्लिश में सीट मिल गई। और अच्छा। मैं तो अपने इतनी प्रफुल्लित थी कि क्योंकि हमने लिटरेचर नहीं किया था तो हमें नहीं मिल सकती थी, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे हमें सीट
2: उसमें मिली। यही रेडियो काम आया,
3: रेडियो काम आया। मैं बहुत अच्छे ड्रामास में जाती थी, मैंने मंचन भी किया उनका, और एक डोगरी नाटक था जब मैं फाइनल ईयर थी अपने BSc होम साइंस में, तो हमारी एक मैम ने, जब क्या होता था कोई भी नोटिफिकेशन आती थी तो लड़कियों ने मेरा हाथ खड़ा कर देना इकट्ठा मिलकर, तो उसमें था हमारे हिस्से आया था डिस्प्ले टैलेंट में, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ करता था, आज भी होता है
2: जी जी।
3: हमारा उसमें नाटक आया डोगरी में।
2: अच्छा।
3: तो प्रोफेसर लाल हुआ करती थी, तो कहने लगी कौन कर सकता है डोगरी का, तो मेरी सहेलियों ने कर दिया, लेकिन मैं थोड़ी हिचकिचाहट से उठी और मैंने कहा मैम मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं है।
2: भाषा पे पूरी पकड़ थी आपकी, डोगरी भाषा पर?
3: हाँ, घर में पूरा प्रयास होता था पिताजी, माता पिताजी का, कि डोगरी बोली जाए, क्योंकि वो आपस में बोलते थे। फिर भी आप ये कहें कि हम बहुत फ्लुएंसी से बोलते थे, नहीं बोलते थे। तो उन्होंने जब कहा कि, मैंने कहा मैम मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुलीग्स तो चाहती है, मेरी सहपाठी तो चाहती है कि मैं करूं, लेकिन मेरी फ्लुएंसी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, डोगरी होते हुए तुम्हें डोगरी नहीं आती, कैसे डोगरे हो तुम। मुझे वो बात दिल में चुभ गई। घर में मैं गई और पिताजी के साथ लड़ाई करने लगी, आपने हमें डोगरी क्यों नहीं सिखाया। उनका, मैं और तुम्हारी माँ तो डोगरी में ही बात करते हैं, तुम ही हिंदी और अंग्रेजी का गेर लगाती हो। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था, बहुत रोई मैं, पर पिताजी ने कहा अगर सच्चे मन से आपको उनकी बात बुरी लगी है तो टेक इट अप एज चैलेंज। मैंने वो चैलेंज लिया, 17 पेज का रोल था, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा शीशा तुम्हारा जज है, जो तुम्हारी एक्टिंग है उसमें निखार लाएगा, शुरू हो जाओ बिना पीछे देखे। तो 17 पेज का मैंने अपने, मैं जानती हूँ और मेरा वो शीशा जानता है,
2: कितने,
3: वो मेरा जानता
2: मेहनत,
3: है वो मेहनत की मेहनत। और बहुत खुशी हो रही मुझे बताते हुए अपने सुनने वालों को कि डिस्प्ले ऑफ टैलेंट में उस साल मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला।
2: ये स्टेज पे इसका मंचन,
3: स्टेज का मंचन होता है, यूनिवर्सिटी लेवल का एक प्रोग्राम होता है, कॉलेज लेवल का।
2: उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे रेडियो में आप परमानेंट?
3: मैं बीएड कर रही थी तो कैजुअल अनाउंसर का निकला, मुझे बुलाया गया, कैजुअल अनाउंसर का मैंने दे दिया, तो उसमें मैंने क्लियर कर लिया। तो उसके बाद बुकिंग्स मिलने लगी, और मीनवाइल मेरे फादर ने मुझे जबरदस्ती बीएड करवाई। जब मैंने पूछा कि क्यों करवाना चाहते हो,
2: आपको हम टीचर बनाना चाहते हैं,
3: ना, उन्होंने कहा जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं चाहते हो, कोई भी बुरा समय आए, आपके हाथ में एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री का कोई सानी नहीं है। बहुत मैंने उनसे, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ थी क्योंकि मैं MA इंग्लिश नहीं छोड़ना चाहती थी, अभी 4 ही महीने हुए थे मुझे MA करते, तो वो बहुत खुश थे कि इसकी प्रोफेशनल डिग्री हो जाए। उस वो जमाना कुछ और था रमेश जी, माँ बाप की कही बात पत्थर की लकीर हुआ करती थी और बच्चे उसको नकारते भी नहीं थे। करनी पड़ी बीएड, कर ली बीएड, और मैं एक्स कॉन्वेंटी थी, तो जब बात फैली कि एक्स कॉन्वेंटी जो है वो बीएड कर चुकी है, क्योंकि मेरी मामी जी वहां पढ़ाती थी तो मुझे भी वहां बुलाया गया,
2: मौका मिला।
3: मैं नहीं चाहती थी पढ़ाना, लेकिन एक साल तक जब मैंने पढ़ाया बच्चे बहुत खुश थे, हमारी मैम बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे लगता था मैं किसी और के लिए बनी हूँ। तो जब सिस्टर ने मुझे कहा, प्रिंसिपल मैम ने, कि आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, उसी समय मैंने अपना मन बना लिया और सिस्टर को कहा, सिस्टर मैं ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं रेडियो में मुझे कैजुअल अनाउंसर का जो प्रोग्राम है करने के लिए ज्यादा दिन देने पड़ते हैं, तो मैं यहाँ नहीं इतना समय दे पाऊंगी। उसके बाद सुभाष शर्मा जी मुझे कंपेयरिंग के लिए बुलाया करते थे खेल जगत कार्यक्रम के
2: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जी बिल्कुल।
3: हाँ, और बहुत उन्होंने मेरी भाषा में निखार लाने के लिए बहुत प्रयास किया और मैंने उनकी एक एक जो नुक्ताचीनी बिल्कुल मैंने सच्चे मन से उसको निभाया। बहुत से अच्छे लोग मिले इस दौरान और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और वो सीख कर अगर आज आपको लगता है कि मादी किसी मुकाम पर वैसे तो नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ मैंने पूरी मेहनत से पूरे पैशन से अपने इस प्रोफेशन को निभाया है क्योंकि लाइव माइक्रोफोन मेरा पैशन था। मुझे बहुत मौके मिले, मेरे फादर मुझे केएस बनाना चाहते थे, फॉर्म भी भरवाया उन्होंने और मैं कर भी लेती क्योंकि मैं बहुत मेहनती थी और जो पिताजी चाहते थे माताजी वो तो मैं करती ही करती थी, लेकिन मैंने उनको ये नहीं कहा पहले कि मैं नहीं करूंगी। उसी दौरान क्या हुआ कि जब मैं यहाँ कैजुअल अनाउंसर आया करती थी तो परमानेंट अनाउंसर्स की पोस्ट निकली, मैंने उनको बिना बताए फॉर्म भर दिया और भगवान की कृपा से रिटर्न क्लियर हो गया, ऑडिशन क्लियर हो गई। उसके बाद पद्मा सचदेव जी बॉम्बे से आई, इंटरव्यू था, इंटरव्यू क्लियर हो गया। यहाँ पे हुआ करते थे मेहत्रा साहब हमारे स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे, तो कुछ महीने के अंदर अंदर हमारी अपॉइंटमेंट लेटर्स आ गई। जब लेटर हाथ में आ गई तो अब क्या कहूँ पापा को, मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया कि मैंने फॉर्म भरा था, मैंने रिटन टेस्ट दिया। जब रिटन टेस्ट देने आए कहते आज क्या था, मैंने कहा पापा आज ड्रामा की रिहर्सल थी। मैंने कहा भगवान मुझे माफ करना, मैं माता पिता के साथ कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन अपने पैशन को नर्चर करने के लिए मुझे वो जरूरी था, वो झूठ नहीं था, वो अपने पैशन की तरफ जो यात्रा शुरू की थी उसका एक पड़ाव था। तो उसके बाद जब लेटर आ गई हाथ में तो मैं ऐसे झूमती झामती हाथ में लेटर लिए हुए घर पहुंच गई, तो पिताजी कहने लगे आजकल क्या बात है माधवी, तुम्हारे पांव जो है जमीन पर नहीं लग रहे। मैंने कहा बात ही कुछ ऐसी है पापा। तो बड़े हैरान हो गए कैसी बात है, मैंने कहा खुद देख लीजिए। जब उन्होंने खोला और देखा तो कहते ओ छे क्या किया तुमने, मैंने कहा क्यों पापा, कहते मैं तो तुम्हें केएस आईएएस बनाना चाहता था। मैंने कहा पापा जो हाथ में आया आप ही कहते हैं बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुशेस,
2: ले लो आप इसको,
3: जो हाथ में है उसमें तो करने दो मुझे, बाकी अगर किस्मत में होगा तो वो भी कर लेंगे। बट आई नेवर लुक्ड बैक क्योंकि मुझे मेरी मर्जी का काम मिल गया था। उन्होंने फिर एक मेरे लिए अड़चन पैदा की कि हमारे माशरे में लड़की को काम नहीं करने देते, तो तुम कैसे कर सकती हो, मैं हेड ऑफ द फैमिली नहीं हूँ, तुमको तायाजी से पूछना पड़ेगा। मैंने कहा बात ही कोई नहीं, तायाजी तो मेरे बहुत बड़े मुरीद है। मैं भाग के गई, मैं कहा तायाजी, कहते क्या बेटा बड़ी खुश है। मैं कहा मेरी नौकरी लगी। कहाँ, मैं कहा रेडियो स्टेशन। अच्छा बहुत अच्छे, तो मैंने कहा तायाजी पापा नहीं मान रहे, कहते कि नहीं करती हैं लड़कियां। ओहो राम को मैं खुद मना लूंगा, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, तुम जाओ। और मरते दम तक रेडियो ट्रांजिस्टर उनके सरहाने के नीचे होता था।
2: रेडियो की यात्रा यहाँ से शुरू
3: हो गई। 6 साल की उम्र से जो शुरू हुई थी वो अगले पड़ाव तक पहुंच गई।
2: इस दौरान काफी कुछ करने को मिला,
3: काफी कुछ करने को मिला, एक बहुत सुखद यात्रा थी। और कहते हैं जब तुम किसी चीज को अपना पैशन बना लेते हो, इश्क जुनून की हद तक उसको तुम चाहते हो, फिर तुम अपना 100% देते हो,
2: किसी हद तक सफलता मिल ही जाती है,
3: मिल ही जाती है। और फिर कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती।
2: हमारे रेडियो में जब अनाउंसर्स की बात करें तो शिफ्ट सर्विस होती है। हाँ। मतलब मॉर्निंग में, दिन में, इवनिंग, लेट इवनिंग, ये आपको करना पड़ा।
3: करना पड़ा। उसी दौरान मेरी शादी हो गई और हम 4 अनाउंसर्स सिलेक्ट हुए थे, उसमें मेरे जीवन साथी भी थे। मुझे नहीं पता था ये मेरे जीवन साथी बनेंगे, तो लेकिन वो केएस की हुई थी उन्होंने, उनकी रिट चल रही थी। तो उस दौरान डॉक्टर जैरथ हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे, वो बहुत उन्हें चाहते थे क्योंकि वो उनके टीचर रहे थे, तो उनका जब तक तुम्हें वो नहीं मिलता यहाँ आ जाओ, यहाँ पे करो, तो वो सफर शुरू हुआ। लेकिन हमारी बरादरी में जो भी देखने आता था, डॉक्टर आता था, इंजीनियर आता था, प्रोफेसर आता था, लड़की तो पसंद है लेकिन नौकरी नहीं करवाएंगे। तो मैंने कहा पापा मैं ऐसे अपने साथी से जीवन कैसे काट सकती हूँ जो मेरी मेरे ही पैशन को दबाकर मुझे उस बंधन में बांधना चाहता है। मैं कहा मैं नहीं करूंगी, आप मान लीजिए शादी में उसी से करूंगी जो मुझे नौकरी करने देगा। तो वो बात चलती रही, हम काम करते रहे। इतने में जो मेरे हस्बैंड के जीजा जी थे, वो मेरे एल्डर ब्रदर के कुली सीनियर थे केंद्रीय विद्यालय में, उन्होंने कहा कि हम आपकी बहन से अपने ब्रदर ने
2: रिश्ते की बात
3: उन्होंने कहा। मैं मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं बड़ा जरूर हूँ इससे, लेकिन मैं अपने पिताजी से बात करूंगी। पिताजी कहे ना मैं नहीं मानता, हमारा जात बरादरी, हम महाजन है, वो ब्राह्मण है, हम नहीं करेंगे। भैया ने कहा ठीक है पापा मत करो, आप मत करो, लेकिन आपको कोई ऐसा लड़का नहीं मिलेगा अपनी बरादरी में जो नौकरी करने देगा, ये नौकरी नहीं छोड़ेगी चाहे पति को छोड़ देगी, मैं अपनी बहन को जानता हूँ। तो पहले पापा ने ही माने, तो कुछ देर के बाद उनको लगा कि भगवान जो निश्चित करता होता वही है, ये बहाने बनते हैं, ये पहले से तय होते हैं। तो हमारी शादी हो गई श्री सौजन्य शर्मा जी से। मेरी डोगरी में निखार लाने के लिए उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। वैसे भी उनके योगदान के बिना, मेरी सासू माँ के योगदान के बिना, मैं इतनी मुश्किल नौकरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नौकरी थी। लेकिन कुछ ही महीने पहले मैंने अपनी सासू माँ को खोया है, उन्होंने मेरी पूरी नौकरी करवा दी और थोड़ी सी रह गई थी। तो मुझे कहती थी कि मुझे बड़ा शौक है, जब तू रिटायर होगी तो मैं तुम्हें लेने आऊंगी। तो अपने बेटे को कहती बड़ा सा गुलाबों का हार बनाना ताकि मैं इसको वो पहना के लाऊं, इसने बहुत अच्छी नौकरी की है। जो भी इसको इनाम मिलता था पहले मेरी झोली में डालती थी। तो मैं कहती थी बेटा ये तुम्हारा इनाम है, तो कहती थी ना अगर मम्मी आप नहीं होते तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच।
2: घर का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, खासतौर पर महिला के लिए, अगर वो कोई नौकरी।
3: हमारे अंदर एक, मेरे और मेरी मदर इन लॉ के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, MOU। जब मैं घर में होंगी वो रसोई घर में नहीं आएंगी, जब मैं घर में नहीं होंगी तो वो रसोई घर में आएंगी, संभालेंगी। और बहुत देर तक उन्होंने संभाला, जब थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब होने भी लगी, पर फिर भी बहुत हिम्मती थी वो।
2: इस दौरान माधवी जी रेडियो आप सुना करते थे जब घर में रेडियो?
3: वो तो मेरे मेरे वॉशरूम में, मेरे किचन में रेडियो हमेशा रहा। मेरे बचपन में वो होता था, उर्दू सर्विस पे आता था।
2: थोड़ा सा वो रिसर्च हमने किया तमिल इरशाद प्रोग्राम के बारे में,
3: मुझे बहुत अच्छा लगता था।
2: उन दिनों बहुत
3: बहुत, और मेरे फादर कहते भी थे सो जाइए, मैं कहा पापा इसके बाद। मैं उनसे मैंने उर्दू बोलनी सीखी थोड़ी। कहते ना ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड ब्रॉडकास्टर, तो वो सुनना जो बहुत जरूरी है एक अच्छा प्रसारक बनने के लिए।
2: बिल्कुल, पेशकश उनकी बड़ी लाजवाब, और उर्दू पे पूरी उर्दू पे पकड़
3: और आवाज का उतार चढ़ाव बहुत कुछ सीखा मैंने।
2: अच्छा, आपकी नजर में रेडियो में अनाउंसर की कितनी अहमियत है?
3: बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे वरिष्ठ उद्घोषक के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं, और आपका एक मुकाम है, एक नाम है, आपको दुनिया जानती है। और आपने जब मुझे कहा कि मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, तो मेरे भी पांव जमीन पर नहीं थे, क्योंकि रमेश मराठा अपने आप में एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो
2: शुक्रिया
3: उद्घोषक का। जैसे जहां तक आपने सवाल है कि मुझे तो लगता है आप जितने भी बेहतरीन प्रोग्राम बना लेते हैं, लेकिन जब तक जो उसका सेल्समैन है, सेल्स गर्ल है, वो उसे अच्छी तरह उसकी आइसिंग, केक की जो आइसिंग होती है वो करके आगे पेश ना करे, तो वो प्रोग्राम जो है वो अधूरा रह जाता है, वो सजता समरता नहीं है।
2: आमतौर पे माना जाता है कि जब भी रेडियो स्टेशन कोई आता है तो वहाँ वो अनाउंसर को देखने के लिए, मिलने के लिए जरूर,
3: क्योंकि उनकी आवाज वो सुनते हैं और उनके मन में आंखों के जरिए उन्होंने एक छवि
2: कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट आपका अपना होंगे
3: बताती
2: हूँ, शेयर करेंगे हमारे सुनने वालों के लिए।
3: मैं अपनी ननद की बेटे की शादी पे अमृतसर गई हुई थी। तो अमृतसर के हमारे एक बहुत पुराने श्रोता हैं प्रेम सागर जी,
2: जी
3: वो हमारे आपका पत्र, आपकी फरमाइश में बहुत खतो खिताब
2: हमारे साथ भी उन्होंने कई बार बात की। बिल्कुल।
3: तो प्रेम सागर जी को पता नहीं, उन्होंने ड्यूटी रूम में फोन किया तो किसने कहा वो छुट्टी पे है और अमृतसर गए हैं। प्रेम सागर जी मुझे फोन करने लगे, और वहां मैं अपनी फैमिली फंक्शन में बहुत बिजी थी। तो मैंने अपने पतिदेव को कहा कि कहते माधवी बिना जाए तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो तुम्हारे बड़े आर्डेंट फैन है। तो मैंने उनको कहा प्रेम जी मैं अभी तो बिजी हूँ, आप बताइए आप कब मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगी, आप बताइए जब आप फ्री हैं, और जब मैं फ्री होंगी कि आपको सूट करता है वो हमने तय कर लिया। एक दिन थोड़ा सा विराम मिला फंक्शन से, तो मैंने सौजन्य जी को लिया और हम चले गए। आप झूठ मानेंगे, उन्होंने जहां पे उनकी दुकान थी उन्होंने पूरे एरिया में झंडियां लगाई हुई थी, और सबको बताया हुआ था कि माधवी आ रही है। मैं अपने आप में झेंप गई और मैं समझ नहीं आई कि मैं कैसे फेस करूं। लेकिन इतना प्यार दुलार जब मिलता है ना, तो आपको किसी हद तक रमेश जी लगता है कि आपने जो बचपन से मेहनत की है आज वो सपना साकार हुआ, और वो मेहनत सार्थक हुई। हमें वो ढोल के साथ, ढोल बज रहे हैं और हमें अपने घर तक ले गए प्रोसेशन में। घर में उनके वृद्धो वयोवृद्ध उनके माता पिता थे, और बहुत बड़ा उन्होंने एक मोमेंटो बनाया हुआ था।
2: अच्छा।
3: मोमेंटो पेश किया, अपनी अर्धांगनी से मिलाया, जलपान कराया, और ये इस वादे से छोड़ा कि आप जब भी कभी आएंगे अमृतसर में मुझे जरूर मिलेंगी। अब वो अपने बेटे के पास फरीदाबाद भी जाते हैं, लेकिन वहां से भी फोन करते हैं हर बार, तुंदे फोन, तुंदे गीत या फोन इन तुंदी फरमाइश में, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय था। डोगरी संगीत का ये लाइव फोन इन प्रोग्राम था, और बहुत सालों तक मैंने किया, और बहुत संतुष्टि इससे प्राप्त हुई, क्योंकि एक पारस्परिक संबंध बन जाता है अपने लिसनर के साथ।
2: सही कहा।
3: गुलजार जी बहुत अजीम शायर और एक अजीम हस्ती, वो आए हुए थे जम्मू में और मैं छुट्टी पे थी, मैंने लीव ली हुई थी, तो मुझे लियाकत जी का फोन आया, आप मिलना चाहती हैं? मैं कही पूछने की बात है, कहते आ जाइए। आप मानेंगे नहीं मैं कैसे पहुंची वहां पे यूनिवर्सिटी में और आमने सामने बिल्कुल उनसे बातचीत हुई, तो विश्वास ना हो कि हम
2: बातचीत कर रहे हैं।
3: बहुत बहुत ऐसी उनकी जो गाने हैं, जो उनके गीत लिखे हुए हैं,
2: उनका कहने का
3: उसका कोई सानी नहीं है, उनका अंदाजे बयान ही कुछ और है, तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह अपने आपको पता होगा कि मुझे बहुत सी कॉन्सर्ट्स करने का मौका
2: मिलता है,
3: बहुत सी कॉन्सर्ट्स मैंने, अनगिनत कॉन्सर्ट्स की। एक तो भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी, इस पे थोड़ी पकड़ थी और भाषा पे माँ बाप बहुत ध्यान देते थे, हमने गलती की नहीं हमारे पॉइंट्स कटने शुरू हो जाते थे, और हम अगर पूरा दिन गलती नहीं करते थे हमें 10 पॉइंट्स मिलते थे, यानी 10-10 रुपए इकट्ठे होने शुरू हो जाते थे।
2: और सबसे खास बात ये रहती है कि आप अंदाजे बयां आपका कैसा है, वो आपके बैठे हुए हैं
3: लिस्टर्स, आपके श्रोता हैं,
2: उनके दिल को छू जानी चाहिए वो बात।
3: आपकी भाषा की शुद्धता, आपकी भाषा की स्पष्टता आपको अलग मुकाम दिलाती है और वही एक उद्घोषक का पहला एक प्रीरिक्विजिट होता है, उसकी आवश्यकता,
2: उच्चारण कहते हैं, उच्चारण कहते हैं। लाइव ट्रांसमिशन के दौरान कोई फनी इंसिडेंट जिसको आप याद करते हैं, हंसी आती है
3: लाइव ट्रांसमिशन के दौरान? हंसी भी आती है और
2: उसको रोकना भी पड़ता है,
3: हंसी को रोकना पड़ता है, और कई बार आपकी सिट्टी पिट्टी भी गुम हो जाती है।
2: जी बिल्कुल,
3: कई बार क्या होता है कि आप लाइव ट्रांसमिशन चला रहे हैं और कोई ऐसा प्रोग्राम जो हमें पहले टेप्स मिला करती थी,
2: बिल्कुल
3: आपको याद होगा, टेप हमें मिली और उसका कार्टन जो था उसके ऊपर लिखा था ये फीचर है
2: इसमें है,
3: लेकिन हम पहले टेप चेक कर लेते थे कि उसमें क्या है,
2: ये जरूरी होता है।
3: हाँ, तो कुछ 2-3 मिनट पहले, क्योंकि बड़ी
2: भागदौड़ होती है
3: जी, जी। और ट्रांसमिशन में उस दिन बहुत बिजी ट्रांसमिशन थी, मैंने 2-3 मिनट लगाया तो जो फीचर उस पे लिखा गया था कार्टन पे वो अंदर नहीं था। अब क्या किया जाए, फोन भी नहीं होते थे ऐसे जो आजकल काम करते हैं, आपके पास मोबाइल फोन तो थे ही नहीं, क्या किया जाए। अब अनाउंस नहीं मैंने अभी तक किया हुआ था, सुबह समरी में हुआ होगा तो मैं कह नहीं सकती, सेकंड ट्रांसमिशन की बात कर रही हूँ। फीचर इतने में मैंने 1 मिनट भाग के, आपको याद होगा कि मेरा जो प्राइमरी की हमारा स्टूडियो है
2: और लाइब्रेरी के साथ बिल्कुल है,
3: तो मैंने अभी पहला वो प्रोग्राम चल रहा था भाग के गई, उसको कहा कि ये कार्टन अलग है और उसमें वो फीचर नहीं है जो मुझे बैसाखी पे चलाना है, उसको मैं कह के आ गई, तो मैंने कहा आप टाइम लीजिए, फीचर कहते 25 मिनट का, मैं टाइम लेके मुझे दे डालिए, तब तक
2: अपने
3: लाइव अपने लिसनर्स के साथ जुड़ी रही और उनको अपनी अगली ट्रांसमिशन के प्रोग्राम्स के साथ अवगत कराती रही कि आप हमारी अगली ट्रांसमिशन में ये प्रोग्राम सुनेंगे, अगले दिन के कुछ खास प्रोग्राम जो उनके बड़े पसंदीदा कार्यक्रम है उनके बारे में बताती रही। इस तरह से मैंने 5 मिनट
2: पूरा
3: किया, थोड़े से हमारे जिंगल्स होते हैं उनको चलाया और कुछ ऐसे कुछ हमने लिखे होते हैं जो हम अपने श्रोताओं के साथ साझा कर सकते हैं। 5 मिनट का समय बहुत होता है ब्रॉडकास्टिंग में, लेकिन भगवान की दया से वो हो गया और वो कार्टन चेंज होके प्रॉपर जो फीचर चलना था वो जब आ गया तो बैसाखी का वो फीचर एयर पे मैंने दे दिया।
2: ये होता है अनाउंसर की जो कहते हैं ना हाजिर जवाबी और उसके
3: प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट,
2: बहुत जरूरी है। एक गाने की गुंजाइश है आपकी पसंद का कोई गाना?
3: गीत तो बहुत पसंद है मुझे, गीत संगीत ही मुझे इस स्टेशन में लेके आया, प्रसारण में लेकर आया, क्योंकि मौसिकी में म्यूजिक में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। लता मंगेशकर की आवाज में एक बहुत ही प्यारा गीत है फिल्म खामोशी का, हमने देखी है,
2: बहुत बढ़िया ये गाना हम आपको सुनाएंगे।
3: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: इतने दिग्गज लोगों के साथ काम करने का जो
1: ड्रामेटाइज हुआ करता था जी,
0: दिग्गज लोगों के साथ काम करने का जो आभास था सुखद, वो मैं बयान नहीं कर सकती। 23 साल तक इट वॉज लाइक अ फैमिली टू मी। हमने हर हफ्ते मिलना, पहले महमूद अहमद जी स्क्रिप्ट लिखा करते थे, उनके बाद जी एस परदेसी जी कितने साल लिखते रहे, के सी मनहास, संजीव शर्मा, इन सब ने स्क्रिप्ट लिखे, लेकिन वो प्रोग्राम चलता रहा 23 साल तक। और वो क्या था, सामाजिक कुरीतियों पर आधारित प्रोग्राम था, जो समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां अपना सिर उठाती थी, उनको कैसे दूर किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, उस पर एक फीचराइज पारिवारिक रूपक हुआ करता था दरीचे। आपका पत्र फरमाइश कम से कम 15 साल तक किया, 18 साल तक प्रोग्राम किया, पत्रावली और आपकी पसंद 1.5 दशक से ज्यादा सालों तक किया। हमारे विविध भारती में कमल जी की मैं बड़ी कायल थी, कमल शर्मा जी बहुत अच्छा बोलते थे, भाषा पे उनकी पकड़ थी, उतार चढ़ाव भाषा का और लहजा उनका बहुत बेहतरीन, बेहतरीन प्रसारक थे, बेहतरीन उद्घोषक थे।
1: उनको आप लगभग सुना करते थे?
0: मैं सुना करती थी।
1: माधवी जी, अनाउंसर के लिए छूट होती है जब वो प्रोग्राम प्रेजेंट करता है, कोई भी प्रोग्राम हो, आपको ये छूट मिलती थी?
0: बिल्कुल सही कहा, स्काई इज द लिमिट। और ये एक अनाउंसर इंडिविजुअल के हाथ में है कि वो जो उसको 30 मिनट या 15 मिनट मिले हैं उनका वो कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, ताकि एक एक शब्द जो है सीधे श्रोता के दिल तक पहुंचे, माइक से दिल तक। और जो ये कहते हैं ना, सीक्रेट को समझ जाता है, राज को समझ जाता है,
1: वही एक सफल अनाउंसर की श्रेणी में आता है।
0: मैं तो नहीं जानती कि मैं कितनी सफल हुई हूँ अपनी इस यात्रा में, लेकिन अपनी तौर से भरसक प्रयास किया कि श्रोताओं की उम्मीदों पर खरी उतर सकूं।
1: लिसनर्स का फीडबैक किस तरह मिलता था आपको?
0: कुछ लोग आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारे एक नाबीना थे, आजकल वो गांधीनगर कॉलेज में लगे हैं और बच्चों के प्रोग्राम में आया करते थे, मुझे उनका नाम भूल, राहुल,
1: राहुल
0: जी, आजकल वो असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक के हैं और बच्चों के प्रोग्राम में आया करते थे और बहुत अच्छा गाते थे। हाँ, जितना हम उनको उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमने कभी उसमें हिचकिचाहट ना दिखाई है और ना हमसे इसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि बच्चों से मुझे बहुत प्यार था। बच्चों का प्रोग्राम मैंने बहुत, 1988 में मेरी नौकरी लगी, उससे पहले से मैं प्रोग्राम किया करती थी और 2002 तक मैं करती रही। आप समझ लीजिए कितने सालों तक मैंने ये प्रोग्राम, 22-23 साल तक मैंने ये प्रोग्राम किया। तो
1: और बच्चों के प्रोग्राम को प्रेजेंट करने की खास बात ये रखनी पड़ती है कि आपको बच्चा बनना पड़ता है,
0: आपको बच्चे की लेवल तक आना पड़ता है,
1: तब जाके बात बनती है।
0: और बहुत लोकप्रिय प्रोग्राम था और मैं उसे बहुत एंजॉय करती थी, और लाइव प्रोग्राम हुआ करता था, रिकॉर्डिंग तो बाद में शुरू हुई।
1: राहुल जी बात कर रहे थे,
0: राहुल जी बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन मैंने उनको ये कहना शुरू किया, पहले मैंने उनको ये कहती थी कि आपकी जो एक कमी है, आपने क्या उसको ठीक करने की कोशिश की? तो कहते थे बहुत देर से चल रहा है, चलिए देखते हैं। लेकिन कुछ जन्मजात ऐसे विकार होते हैं जो नहीं ठीक होते, पर बेहतरीन इंसान था वो। तो मुझे आप मानेंगे, मैं एक बार बच्चों के प्रोग्राम के बाद उसकी पढ़ाई शुरू हो गई, वो हमसे अलग हो गया, परेड कॉलेज में मैं किसी प्रोग्राम में गई हुई थी, तो मुझे वहां पे उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया हुआ था। मैं बैठी हुई थी तो किसी से बात कर रही थी, तो राहुल अपना ऊपर गाना प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मुझे तब तक पता नहीं था ये राहुल है। अगर बातचीत करते करते अचानक वो ऊपर से स्टेज से कहता है, माधवी मैम बैठी हुई है हॉल में। तो मैंने कहा हाँ मैं माधवी हूँ। कहता मैम आपने मुझे पहचाना नहीं? जैसे उसने कहा, मैं कहा आप राहुल हो? कहता मैं राहुल हूँ। तो मुझे लगा, और उसको कहना मैम आज मैं आपकी पसंद का ही कुछ पेश करूंगा, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैंने, रेडियो में तो मैं आपको सुनता रहता हूँ, लेकिन ऐसे आपकी आवाज मैंने बहुत देर के बाद सुनी। जितना दुलार प्यार वो बच्चे करते, तो मैंने कहा तुम वो बहुत अच्छी गाते हो, मेहदी हसन की गजल, प्यार भरे दो शर्मीले नैन।
1: क्या बात है,
0: क्या खूबसूरत, उसने उसकी गजल की अदायगी का कोई सानी नहीं, कोई विकल्प नहीं है। और मुझे इतनी खुशी हुई, एक दिन उसका फोन हुआ, कुछ साल पहले आया, तो कहने लगा, मैंने उसका नंबर सेव किया, था मैं राहुल क्या हाल है, कैसे याद किया है, कैसी जिंदगी गुजर रही है? कहता मैम आपके बलबूते पर बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं कहा मेरा तो इसमें कोई योगदान नहीं है। तो मैम मुझे आपको कुछ बताना है, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर किया है,
1: क्या बात है,
0: नेट क्लियर किया पहले मैंने, अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया हूँ गांधीनगर कॉलेज में। मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा अपना बच्चा जैसे किसी मुकाम पर पहुंच गया है, और मैंने जाके भगवान को इतना शुक्रिया अदा किया, इतना ग्रैटिट्यूड पे किया कि एक बच्चा जिससे आपने कुछ ले लिया था उसको बहुत कुछ दे दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं भगवान कुछ अगर लेता है बहुत कुछ देता भी है।

0: उसी चीज के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए।
1: माधवी शर्मा को कभी किसी प्रोग्राम को पेश करने में कोई चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया? हाँ मैं करूंगी, और ये हो गया।
0: हाँ, इस दौरान बहुत से दिग्गजों को भी मैंने उनको होस्ट किया, चाहे वो उस्ताद अमजद अली खान हो, पंडित शिव कुमार शर्मा हो, बहुत से, आपको पता, हमारे यहाँ जितेंद्र सिंह आए, राधिका चोपड़ा, सीमा अनिल सिंह, बहुत से,
1: यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह।
0: प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की, तो मैंने नरेंद्र मोदी जी की
1: कई बार,
0: तीन बार मैंने लाइव किया है उनको होस्ट स्टेज पे, और पांच बार उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने होस्ट किया है। वो तो एक अपने आप में अलग एक अनुभूति होती है। लेकिन जब मुझे जम्मू से श्रीनगर बुलाया गया, एक उनका पिछली बार इसलिए वो श्रीनगर आ रहे थे, तो मुझे अटल डुल्लू जी के सेक्रेटरी ने फोन किया कि मैं चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से बात कर रहा हूँ और डुल्लू साहब आपसे बात करना चाहेंगे। माधवी जी कैसी हैं आप? मैंने कहा सर बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। कहने लगे आपको श्रीनगर आना होगा नेक्स्ट फ्लाइट से। मैंने कहा सर क्या हो गया? मुझे पता था मोदी जी आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप होस्ट करो। मैंने कहा सर मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मान रही हूँ कि आप मुझे इस काबिल समझ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, मेरी अवेलेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि मैं उनके परमिशन के बिना नहीं आ सकती, तो आप हेड ऑफ द ऑफिस से बात कीजिए और मेरी अवेलेबिलिटी। उन्होंने उसी समय किया, तो फिर मुझे कहा गया कि हमें दिल्ली से लेनी है परमिशन, दिल्ली से भी ले ली गई और मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग श्रीनगर पहुंच गई, क्योंकि मैंने जम्मू में भी उनके बहुत किए थे, जम्मू में भी मैंने उनको होस्ट किया था। तो वहां जाकर ये लगा कि यहाँ भी बड़े बेहतरीन अनाउंसर हैं, इतनी उनकी अच्छी आवाज है, आवाज में उनकी इतनी खनक है,
1: जी, जी, जी।
0: आपने इतने बेहतरीन प्रोग्राम अपने टाइम में किए हुए हैं, कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जिसको आपने होस्ट ना किया हो। लेकिन वहां जाके इतना जरूर तुम्हें महसूस होता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इसे ऐसा सुनहरी मौका मिला है।
1: ये बहुत बड़ी बात है
0: और बहुत अच्छे से वो हो गया। तो आप सच मानेंगे, ये बात मैं अपने श्रोताओं से आज पहली बार साझा कर रही हूँ। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होने को था तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति और आपके ओजस्वी मार्गदर्शन के लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच मानिए, प्रधानमंत्री जी मेरे से तीन कुर्सी दूर थे, मेरी ओर मुड़े और कहने लगे बहुत अच्छे, ऐसे किया और आगे से अंगूठा किया, बहुत अच्छे। मैं एकदम से हिल गई कि एक प्राइम मिनिस्टर को क्या लगा कि वो किसी होस्ट को ऐसा बोले।
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन आपने गुरु महाराज का शुक्रिया भी मैंने अदा किया अपने आंखें बंद करके कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस काबिल नहीं थी लेकिन आपने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैंने एकदम से ऐसे किया, जब प्रधानमंत्री जी चले गए, चीफ सेक्रेटरी, सारे आईएएस ऑफिसर सब आके गले लगा रहे, कहते ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि किसी होस्ट को प्रधानमंत्री जी ने किया हो। तो मुझे लगा कि मुझे रिटायरमेंट से पहले सबसे बड़ा तोहफा जो है वो मिल गया है।
1: जम्मू रेडियो के तीन ऐसे पसंदीदा कार्यक्रम बताइए जो आपको बेहद पसंद है, जो आप नहीं करते हैं कोई और करता है।
0: अच्छा, ये तो बहुत मुश्किल सवाल हो गया।
1: जिसको आप प्रेजेंट नहीं करते हैं कोई और प्रेजेंट करता है।
0: अच्छा जी, एक तो आप जो करते थे कठुआ स्टेशन से, वो बहुत मेरा पसंदीदा कार्यक्रम था,
1: यादें बन गई गीत।
0: यादें बन गई गीत बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि एक अनाउंसर को अगर अपने लिसनर की जो कैप्टिविटी, उसको कैप्टिवेट करना है, उसके इंटरेस्ट को कैप्टिवेट करना है, उसकी तवज्जो हासिल करनी है, तो कैसे करनी है वो आपके हाथ में है। इसके अलावा हमारे यहाँ से ड्रामा निगार बहुत अच्छे हुए हैं, महमूद अहमद जी की लिखी झलकियाँ और उनकी पेशकश तो बहुत अच्छी थी। रीटा यूसुफ बहुत अच्छी अनाउंसर हुआ करती थी और बहुत अच्छा पंजाबी प्रोग्राम करती थी, मैं उनकी आवाज की बहुत कायल थी और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। उनके पंजाबी प्रोग्राम इतने मकबूल थे, मैं कहा करती थी कई बार मजाक से ही, अगर आप इनको एलओसी पर खड़ा कर दें तो पाकिस्तान और भारत में जो भी कुछ भी कमियां
1: हैं,
0: खटपट है, वो दूर हो जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: ये तो मजाक की बात थी, लेकिन उनके चाहने वाले अक्रॉस द बॉर्डर
1: उस पर बहुत लोग थे।
0: हम पत्रावली और आपकी पसंद किया करते थे रमेश जी, मैं और नितिश, पत्रावली और आपकी पसंद जो युवानी सर्विस पे आता था, हमें पाकिस्तान से गिफ्ट्स आई पैक होके, वहां से हमको पार्सल्स आए। तो आप जान सकते हैं कि ये जो दूरियां हैं ये औरों ने बनाई है, आपस में कोई दूरी नहीं है, हमारा वही एक तरीकाकार है, हमारे रिवाज वही हैं, सब कुछ एक है
1: और आवाज की कोई सरहद नहीं।
0: आवाज की कोई सरहद नहीं, बिल्कुल सही कहा, आवाज की कोई सरहद नहीं है।
1: बिल्कुल, ये तो दो प्रोग्राम हुए, तीसरा प्रोग्राम बताइए।
0: तीसरा प्रोग्राम आप हमारे यहाँ से दरीचे प्रोग्राम जो मैं तो खुद भी थी, लेकिन पेश करने वाले महमूद अहमद जी थे, मैं उनकी भी बहुत कायल थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते थे। सुभाष शर्मा जी खेल पत्रिका कार्यक्रम करते थे, और वो पत्रिका कार्यक्रम क्या होता था, 9:30 बजे टेप चलनी होती थी, 8 बजे वो जागते थे उस अपनी नींद से, क्योंकि काम करके फिर 8 बजे
1: उन्होंने 5-5, 10-10 मिनट करके वो कट्स लाते थे।
0: पर वो जो उनमें प्रोफेशनलिज्म था,
1: तो कमाल का था,
0: जो वो जो उनकी एंकरिंग थी, जो उनकी प्रोडक्शन थी, जो उनकी आवाज का इस्तेमाल था, उसका
1: लाजवाब था। एक गाना आपको हम सुनवाना चाहेंगे, कोई आपकी चॉइस। लता जी का तो गाना आपने सुनवाया खामोशी फिल्म से।
0: एक और गाना है बहुत पसंद है मुझे मुकेश की आवाज में, फिल्म आनंद का।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: वो कौन सा गाना है?
1: मैंने तेरे लिए ही सात रंग
0: के सपने।
1: क्या बात है, ये गाना हम आपको सुनवाते हैं।
2: मैंने

0: माधवी जी, हिंदू फिलॉसफी में पुनर्जन्म की बात होती है। अगर आपको दूसरा जन्म मिलता है तो क्या बनना चाहेंगे आप?
1: ये सवाल तो आपको, इसका जवाब आपको पता है मैं क्या दूंगी। मैं एक पुनर्जन्म क्या जितने भी जन्म दोबारा लूं, मैं हर जन्म में एक प्रसारक ही बनना चाहूंगी। आवाज की दुनिया की रेडियो सखी माधवी ही बनना चाहूंगी। ये हाँ। मेरे दिल के बहुत करीब था, है और रहेगा, क्योंकि ये मेरा इश्क, जुनून, मेरा पैशन था, है और रहेगा।
0: इसके अलावा कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए रेडियो के दौरान जिसको आप कभी भूल नहीं पा रहे हैं, रेडियो अपनी सर्विस के दौरान।
1: हाँ, हमारे यहाँ से 10 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। आकाशवाणी एनुअल अवार्ड्स आयोजित हुए थे जम्मू में, उसको होस्ट करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। डीजी साहब आए हुए थे, डीडीजी आए हुए थे 4, तो वो लोग बहुत डरे हुए सहमे हुए थे कि जो पिछली बारी का आकाशवाणी एनुअल अवार्ड था वो कोलकाता में हुआ था, तो कुछ इतना उसमें कुछ खामियां रह गई थी। तो जब प्रोग्राम हो गया तो ब्रिजेश्वर सिंह हुआ करते थे डीजी, उन्होंने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा कि आज मैं इतना खुश हूं माधवी, मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे और प्रोग्राम इतना स्मूथ गया। मेरे साथ रविकांत थे, वो हिंदी में कर रहे थे, मैं अंग्रेजी में कर रही थी। गुलाम नबी आजाद तब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। तो बहुत जोरावर में ये प्रोग्राम हुआ था, बहुत दुनिया थी, बहुत बेहतरीन तरीके से ये प्रोग्राम हुआ। और जो मुझे संतुष्टि मिली कि जो लोग मुझसे तवक्को रखते थे उस पर मैं खरी उतरी, और ये प्रोग्राम मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी।
0: ये ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे,
1: क्योंकि आकाशवाणी एनुअल अवार्ड्स का जो एक दर्जा है वो अपने आप में बहुत ऊंचा है, और किसी भी स्टेशन के लिए उसे

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

तो शुभ ओजान एफ एम नमत आचार्या सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजिव पनि पसंदीदा बात।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: You're enjoying 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत। हम सुन रहे हैं 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

मैं चाहुंदा हां इदां ही तू हसदी रह, दूरों दूरों दिल मेरे विच वसदी रह, मिलके मैनू मुख तो तेरे हासा ना उड़जे, बिन देखे ही मेरियां गल्लां दसदी रह, बिन देखे ही मेरियां गल्लां दसदी रह।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो विदस्ता असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदारा मेनू 90.0 मेगा।

0: घी दालच महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

देश है अपना देश है अपना देश है अपना देश है आज से सब रहे थे लाज से अपना देश है आज से सब रहे थे लाज से दूसरों के राज से उनके तख्त ताज से उनके तख्त ताज से कट गया।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो बिदस्ता। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकर आए हैं आज के कृषि समाचार और इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगी मेरी साथी।
1: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नैना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: कपास की फसल में हो सकता है चित्तीदार और गुलाबी सुंडी का प्रकोप, थ्रिप्स चुरड़ा रोग से भी बचाना जरूरी। कपास की फसल करीब 2 महीने की हो चुकी है, ऐसे में खेत का प्रतिदिन निरीक्षण करें। जून से देसी कपास में वित्तीदार सुंडी का प्रकोप होता है। इसमें बढ़ती शाखा का मुरझा जाना, बोकी या डोडी का गिरना या पंखड़ी नुमा बोकी का बनना इत्यादि लक्षण शामिल हैं। इसके नियंत्रण के लिए 100 से 125 मिलीलीटर फेनवेलरेट 20 EC प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. काम्बोज ने बताया कि नरमा की फसल 40 से 45 दिनों की होने पर 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से गुलाबी सुंडी की निगरानी के लिए लगाएं। 3 रातों में यदि 12 से 15 गुलाबी सुंडी के वयस्क ट्रैप होते हैं तो स्प्रे की आवश्यकता है। कपास की फसल में फूल बनने की शुरुआत होने पर गुलाबी सुंडी की निगरानी अवश्य करें। इसके लिए प्रति सप्ताह खेत के विभिन्न स्थानों में कम से कम 100 फूलों का निरीक्षण करें। गुलाबी सुंडी से प्रभावित फूल फिक्री नुमा अथवा गुलाब नुमा दिखाई देते हैं। ऐसे फूलों को खोलकर देखने पर उनके अंदर गुलाबी सुंडी पाई जाती है। खेत में या आसपास रखी गई पिछले साल की नरमा की लकड़ियों के टिंडे एवं पत्तों को झटका कर अलग कर दें एवं इकट्ठा हुए कचरे को नष्ट कर दें। इन लकड़ियों के टिंडों में गुलाबी सुंडी निवास करती है। जून में कपास की फसल में थ्रिप्स चुरड़ा का प्रकोप शुरू हो जाता है। 60 दिनों से कम अवधि की फसल में थ्रिप्स संख्या यदि 30 थ्रिप्स प्रति 3 पत्ता मिले तो नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। हर सप्ताह खेत में कम से कम 100 फूलों का निरीक्षण करें किसान। नीम आधारित कीटनाशक छिड़कें। अनुसंधान निदेशक डॉक्टर राजवीर गर्ग ने बताया कि कपास की शुरुआती अवस्था में ज्यादा जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से मित्र कीटों की संख्या भी कम हो जाती है। नरमा की फसल में 10 से 20% पौधों में बौकी बनने की शुरुआत होने पर गुलाबी सुंडी का प्रकोप रोकने के लिए 1.0 लीटर नीम आधारित कीटनाशक निम्बी सीडन या अचूक को 100 से 125 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। कपास की फसल 60 दिनों की होने के बाद तथा गुलाबी सुंडी का प्रकोप फूलों में 5 से 10% होने पर छिड़काव इमामिक 3-बेंजोएट 5-ACG की 100 ग्राम मात्रा को 100 से 125 लीटर पानी की दर से प्रति एकड़ छिड़काव करें। अच्छी बारिश के बाद NPK का प्रयोग करें। कपास अनुभाग के अध्यक्ष डॉक्टर करमल सिंह मलिक ने बताया कि अच्छी बरसात के बाद ही यूरिया का 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। अगर बिजाई के समय कुछ नहीं डाला है तो 1 बैग यूरिया की जगह DAP डालें। अब अच्छी बरसात के बाद NPK का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो। जहां ड्रिप द्वारा सिंचाई की सुविधा है वहां पर घुलनशील उर्वरक 3 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि बारिश हो जाए या सिंचाई करनी पड़े तो प्रति एकड़ 1 बैग यूरिया का प्रयोग करें। साथ ही निराई गुड़ाई अवश्य करें ताकि खरपतवारों से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। फव्वारा एवं टपका विधि से सिंचाई प्रतिदिन न करें। पत्ती मरोड़ रोग से ग्रस्त पौधे उखाड़ दें। जड़ गलन रोग से प्रभावित पौधों के आसपास के स्वस्थ पौधों में कार्बिडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर 400 से 500 मिलीलीटर जड़ों में डालें। बीमारी से सूखे हुए पौधों को उखाड़ दें, जिससे बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। फसल की लगातार निगरानी रखनी चाहिए व पत्ती मरोड़ रोग से ग्रस्त पौधों को उखाड़ कर दबा देना चाहिए।
1: दिल्ली पंजाब तक पहुंचाया 5 रंगों के तरबूज व चेरी टमाटर का स्वाद। पानीपत के राम प्रताप ने पुश्तैनी खेती को ऑर्गेनिक खेती का रूप दिया। पानीपत के सिवाह के रहने वाले प्रगतिशील किसान राम प्रताप शर्मा ने कृषि की दुनिया में नए आयाम स्थापित किए हैं, खेती को ऑर्गेनिक ढंग से किया है। अब पानीपत के 5 रंगों के तरबूज व चेरी टमाटर का स्वाद दिल्ली, पंजाब व नोएडा में ऑनलाइन ऑर्डर पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में पहली बार ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की, लेकिन पर्यावरण अनुकूल नहीं होने के कारण वह खेती का विस्तार नहीं कर सके। वह राष्ट्रपति सहित कई अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। राम प्रताप शर्मा ने बताया कि उनके पिता राधेश्याम शर्मा ने पिता और दादा की खेती संभाली थी। उन्होंने भी 17 साल की उम्र में 1989 में खेती को संभाल लिया। उस वक्त रेलवे लाइन के किनारे 14 एकड़ जमीन पर गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि की खेती की जा रही थी। उन्होंने 1982 में टमाटर, आलू, खीरा, तोरई, करेला, लौकी, कद्दू, प्याज, पेठा आदि सब्जियों की खेती को शुरू कर दिया। उन्होंने यूरिया आदि केमिकल का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दिया और सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर दिया, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। 2021 में थाईलैंड के बीच से ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। राम प्रताप ने बताया कि 7 साल पहले उन्होंने थाईलैंड, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के हाइब्रिड बीजों से खेती का स्वरूप बदलना शुरू कर दिया था। 2019 में उन्होंने ताइवान के बीजों से चेरी टमाटर की खेती करना शुरू किया था, जो अब काफी बढ़ गई है। वह हर सप्ताह वह 1 क्विंटल चेरी टमाटर दिल्ली व 1 क्विंटल नोएडा व पंजाब के लुधियाना में भेज रहे हैं। 2021 में थाईलैंड के बीज से ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। उसके बाद सन 2022 से अंदर से लाल के अलावा पीले, संतरी और नीले रंग के तरबूज की खेती शुरू की। इसके साथ ही वह अंदर व बाहर से पीले रंग का तरबूज भी उगा रहे हैं। इस कारण उन्होंने 3 एकड़ और खेती के लिए भूमि खरीद ली। प्रति हफ्ते वह 4 से 5 क्विंटल तरबूज उगा रहे हैं। इजराइल के डेलीगेशन ने 2 दिन की रिसर्च। 2 साल पहले इजराइल के डेलीगेशन ने 2 दिन तक उनकी खेती पर रिसर्च की थी। इस टीम ने सुबह से रात तक की दिनचर्या, बीजों, खेती करने के तरीके, तकनीक, पद्धति आदि बिंदुओं पर काफी बारीकी से रिसर्च की थी। मानसून की पहली बारिश के बाद 15 जुलाई तक कर लें बाजरे की बिजाई। बिजाई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई जरूर करें। बारिश के बाद से ही खेतों में बिजाई तेज हो गई है। कृषि विभाग ने जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के मध्य तक मानसून की पहली अच्छी बारिश के तुरंत बाद बाजरा की बिजाई की सलाह दी है। बिजाई से पहले बीज को फफूंद नाशक जैसे कार्बन डाइजम 2 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित जरूर कर लें। बिजाई सीड ड्रिल या पोरा विधि से करें। पौधों को बराबर धूप और हवा मिल सके, इसके लिए बिजाई के 10 से 15 दिन बाद अगर पौधे बहुत पास पास उग गए हैं तो कमजोर पौधों को उखाड़ कर उनके बीज की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर कर लें। इससे बचे हुए पौधों को फैलने की पूरी तरह जगह मिलती है। बिजाई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें। यदि जरूरत हो तो बिजाई के तुरंत 38 घंटे भीतर इट्राजिन नामक दवा का छिड़काव भी किया जा सकता है। यूं तो बाजरा मुख्य रूप से वर्षा आधारित बारिश के पानी पर निर्भर फसल है और इसमें बहुत कम पानी की जरूरत होती है, लेकिन अगर बारिश ना हो तो फसल की 3 संवेदनशील अवस्थाओं में पानी देना बहुत जरूरी है। 3 सिंचाई करना आवश्यक। कृषि उपमंडल अधिकारी डॉक्टर अजय यादव ने बताया कि अगर जुलाई महीने में भी मॉनसून का साथ मिला और सामान्य बारिश हुई तो बाजरे का रकबा तय लक्ष्य को पार कर सकता है। इस समय पौधों में कल्ले फूट रहे होते हैं। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन में करें। तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन में करें। इस दौरान बालियों में दाना भर रहा होता है।
0: यह थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि संबंधित जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर है 7056413010। अब हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। स्वस्थ रहिए। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।
1: मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC/ST, आधार कार्ड, जमीन की फरद, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रुपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: டாய்ச்சு பொசான் நமத் அஷாரியா சிஃபர் ரேடியோ வித்தஸ்தா ஹம் சஃபர் ஜிந்தகி ஹந்த்.
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: थी दालच में, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदार 90.0 में।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, तुशु बोजान रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुंद। रेडियो वितस्ता छु पन्ने माजी जेव, पोछर दिन खतर, वक्त वक्त, तुझ खतर नई प्रोग्राम, तो नव जानकारी हेत हमेश इवान। बचुस तुहुंद रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज छुस बो तुहुंद खतर कशर ब्रॉडकास्ट सेगमेंट्स मंज अख नव डल हेत आमुत। आज बोजनो तुम अशुर अफसान जन लिखमुत सानि हंद मायानाज लेखक श्री वीरेंद्र पटवारी सबन अत अफसानस नाव पोज अपुज वलि बोजव ये अफसान पोज अपुज अख लकुट अफसान अमिक लेखन वल वीरेंद्र पटवारी।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: और मत छोड़ो, हर घर तक, हर गांव तक आए।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी, किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: देख रे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
3: पेश है प्रोग्राम शामे गजल, एपिसोड 2, कलाम भारती रैना। पेश कर रहे हैं आरजे किरनी।
4: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। पेश है प्रोग्राम शामे गजल। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी है, जो ओरिजिनली रैनावारी श्रीनगर कश्मीर की बाशिंदा है, अब जम्मू में कयाम पजीद है। उनकी लिखी गई गजलों को अपनी आवाज से सजाया है कश्मीर के मायोनाज गुलोकार कैसर निजामी साहब और सुमन पंडिता जी ने। जिंदगी की कहानी में हर पल एक नया रंग है, हम ना रहे तेरे तलबगार, पर तू हमेशा संग है, हर मोड़ पर नया सफर साथ संग चले।

कुदरत की तराशी गजल हूँ मैं, दिल के हर धड़कन में बसी कहानी। लोग समझते हैं कुछ नादान हूँ मैं, मेरी शायरी में छुपी है एक मुस्कुराहट रवानी।

जिंदगी के कुछ पल हैं ऐसे जिनमें बसी है मीठी मीठी यादें, दिल को छू जाती है वो मीठी से यादों का अफसाना।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल। उम्मीद करते हैं आपको ये गजलों का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक 7056413010 पर भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल एपिसोड 2। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी था। पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, हिदायतकार भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी रेडियो सखी किरणी एक बार फिर हाजिर हूँ रेट्रो हिट्स के एक और एपिसोड के साथ। बिना तेरे जिंदगी से शिकायत क्यों करूं भला, बिना तेरे जिंदगी से शिकायत क्यों करूं भला, गिला तब करूं जब तुम साथ होके भी पास नहीं हो

जान तुम पर निसार करती हूँ, जान तुम पर निसार करती हूँ, मैं नहीं जानती दुआ क्या होती है।

हजारों ख्वाहिशें ऐसी जिन पर दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी जिन पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले।

रफ्तार जिंदगी की कुछ यूं बनाए रख, रफ्तार जिंदगी की कुछ यूं बनाए रख कि दुश्मन भले ही आगे निकले, दोस्त कोई ना पीछे छूटे।

मुस्कान बनाए रखो, सब साथ हैं गालिब। मुस्कान बनाए रखो, सब साथ हैं गालिब, वरना आंसुओं को आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। वरना आंसुओं को आंखों में भी पनाह नहीं मिलती।

तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझको ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम। तुझको बेहतर बनाने की कोशिश में तुझको वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम। माफ करना ए जिंदगी, तुझको ही नहीं जी पा रहे हैं हम।

कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआओं की तरह होते हैं जो किस्मत से मिलते हैं।

मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी खरीद के देखे। मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी खरीद के देखे, लेकिन जिंदगी फिर नहीं मुस्कुराई बचपन की तरह। इसी के साथ ही आपसे इजाजत चाहती हूँ। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।

90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, कतरा कतरा बह जाए और तुम देखते रहो, सुलगते रहो, सिसकते रहो, मिटते रहो, फना होते रहो। आज थर थराती रही मेरी रूह, रूह से मिलकर, इसलिए गीली हुई मेरी आंखें बरसों

तुम्हें याद करता है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए शायद तुम लौट आओगे, इस दिल का दर्द मिटाने के लिए।

इस कारवां में छूट गए मेरे अपने, अपने जो अब पराए हो गए। जीवन के पतझड़ के मौसम की तरह यूं ही गुजरता रहा। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी, अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी, अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे।

करती हो तुम शाम सहर मेरी दुनिया में, छू जाती हो मेरी उम्मीदों को, पिघल जाती हो मेरे साथ इस बर्फीले मौसम में, अपने जज्बात कई हादिसात लिए। तुम खुशबू हो, रंगी नूर हो, भीगते मौसम में भीगती बारिश का एहसास हो, तुम मेरे हो।

ये वो एहसास है जो अक्सर मेरी दहलीज पे दस्तक देकर यूं ही चला जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। मैं जानता हूं सर्द मौसम की ठंडी हवाएं तुम्हें छूकर मेरी गली से गुजरती हैं शब रोज। मेरी अनदेखी अनसुनी इन रास्तों की पहचान अब कौन कराए, जबकि इन अंधेरी राहों पे चलते चलते

आप सुन रहे थे रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रहते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट कृष्णा। चाहूंगी आपसे आज्ञा, मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।